0: प्लास तुमको वावी
1: बमंगा तक आंखों में नंबू मंगा केल संजयम बाई सेरों फुकतान नंबू माइंस फावटन से नंबू माइंस अनोटन समास निनी नमी से ट्रम्प सोफा अंड्रा संड्रा सलाव टेनिस फिजरा ना ताने ते पियांट चाते वामनी रोपुल ते उयों ना तमले ले फोलुन निस फंड्रा सना नारा नंद्रा ते उटन फिफ्टीन ले प्रेस ना इस मुझांत ते ना प्रेस ना फोटन ने करते मोबिल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना टेंटें से सेंबा सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने अंदो सुरात ना रा उटन ये वेतन मेनो तुझी सुना तो उन